ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर जेलेंस्की का कहना है कि मंगल से बुध तक यूक्रेन पर किए जाने वाले बड़े रूसी हमले में 25 अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हुए हैं। जेलेंस्की ने बुध को एक वीडियो तकरीर में इस हमले की मजम्मत की। उन्होंने कहा, ये एक तरह का वो तोहफा है जो पुतिन ने खुद को अपनी सालगिरह के मौके पर दिया। बच्चों का खून और लोगों का कत्ल। वाजह रहे कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन की सालगिरह बुध को थी। जेलेंस्की ने कहा कि एक मिसाइल शमाली इलाके चर्निहियो में एक रिहायशी इमारत को बराह रास्त लगा। उन्होंने कहा कि 19 अफराद हलाक हुए, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल हैं। सदर ने निशानदेही की कि इस हमले में बगैर पायलट वाले तैयारों के साथ साथ कई बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल भी इस्तेमाल किए गए। रूस की वजारत दिफा ने ऐलान किया है कि उसने तंबाकू बनाने वाली एक जापानी कंपनी की यूक्रेन में कायम एक जेली फर्म पर हमला किया है, जो बकौल रूस के यूक्रेनी अफवाज के लिए गोला बारूद तैयार कर रही थी। जापान टोबैको इंटरनेशनल JTI ने इस हमले की तर्दीद की है। उसने NHK को तहरीरी तौर पर यह भी बताया कि हमारे तमाम मुलाजमीन महफूज हैं। रूस की वजारत दिफा ने बुध के रोज सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि उसने यूक्रेनी दिफाई सनत के इदारों के साथ साथ बंदरगाह के बुनियादी ढांचे और बहरी जहाजों पर जमीनी, बहरी और फजाई हथियारों और ड्रोन्स के साथ जबरदस्त हमला किया है। इसमें वस्ती यूक्रेन के पोल्टावा इलाके में JTI का तंबाकू प्लांट भी शामिल था। JTI के ऑफिशियल बयान के मुताबिक JTI तंबाकू की मसनूआत तैयार और फरोख्त करती है और कभी भी फौजी पैदावार में शामिल नहीं रही। बयान में यह भी कहा गया है कि फैक्ट्री पर मुतअद्दिद मौके पर हमला किया गया था और ये कि हमलों से पहले प्लांट में काम मुअत्तल कर दिया गया था। बयान में कहा गया कि सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मजीद तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती, लेकिन प्लांट के तमाम मुलाजमीन महफूज हैं। यूक्रेन में जापानी सफारतखाने का कहना है कि ऐसी कोई इत्तला नहीं है जिससे पता चले कि इस नए हमले में कोई जापानी शहरी मुतासर हुआ है। जापान फेयर ट्रेड कमीशन ने मुल्क के इंसदाद इजारादारी कानून की खिलाफवर्जी के इल्ज़ाम में 4 बड़ी जापानी बेयर साज कंपनियों पर छापे मारे हैं। शुबा है कि उन्होंने बेयर की कीमतों में इजाफे को मरबूत करने के लिए इजारादाराना घटजोड़ तश्कील दिया। आसाही ब्रेवरीज, किरिन ब्रेवरी, सापोरो ब्रेवरीज और सांतोरी स्पिरिट सभी टोक्यो में कायम कंपनियां हैं, जिनका मुल्की बेयर मंडी में 90% से ज्यादा हिस्सा है। जराय का कहना है कि इन पर यह फैसला करने की साजिश का शुबा है कि होलसेलरों को बेयर बेचते वक्त कीमतों में कब और कितना इजाफा किया जाए। इन कंपनियों ने खाम माल की बढ़ती हुई कीमतों का हवाला देते हुए अक्टूबर 2022 और अप्रैल 2025 में कीमतें बढ़ा दी थीं। ऐलानात का वक्त करीब करीब एक जैसा था। चारों कंपनियां ब्रायवर्स एसोसिएशन ऑफ जापान की रुकन हैं। जराय का कहना है कि ये एसोसिएशन माहाना इजलास मुनक्किद करती है और सेक्शन चीफ की सतह के अहदेदारान ने मुबैना तौर पर कीमतों में हम आहंगी के लिए पसे पर्दा मुलाकात की। तबादला ख्यार में बेर जैसे मशरूबात शामिल किए गए। हर कंपनी ने कहा कि वो तहकीकात में मुकम्मल तावुन करेगी। कमीशन ने कीमतों में सिलसिलावार इजाफे से मुस्तफीद होने वाले कार्टेल से सख्ती से निमटने की अपनी पॉलिसी का इशारा दिया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए NHK.JP/Urdu।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 9 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। रूस के अभियोजकों ने नीदरलैंड्स की सरकार और अन्य से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अधिकारियों को हिरासत में लेकर उन्हें रूस को सौंपने का अनुरोध किया है। मॉस्को में महाअभियोजक कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित आईसीसी के 9 अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। दिसंबर 2025 में एक रूसी अदालत ने इन अधिकारियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने अकाने और अन्य अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में 3.5 साल से 15 साल तक की कारावास की सजा सुनाई थी। अकाने की सजा का ठीक से पता नहीं है। मार्च 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक अन्य अधिकारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद रूस ने इन अधिकारियों को वांछित लोगों की सूची में डाल दिया था। आईसीसी ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को गैर कानूनी रूप से रूस भेजने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी का मुख्यालय द हेग में है। एनएचके ने नीदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की, जिन्होंने बताया कि 2021 से रूस को प्रत्यर्पण करने पर प्रतिबंध लगा है और नीदरलैंड्स आईसीसी के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के काम का दृढ़ता से समर्थन करता है। प्रमुख कन्वीनियंस स्टोर संचालक लॉसन सहित कई जापानी कंपनियों ने अनधिकृत एक्सेस के कारण डेटा चोरी की जानकारी दी है। लॉसन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसके 21.5 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा अवैध रूप से एक्सेस किया गया। ग्राहकों के नाम, ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होने की आशंका है। बिग एको नामक कराओके चेन की संचालक दाइची कोशो कंपनी का कहना है कि एक बिजनेस आउटसोर्सिंग कंपनी में मौजूद मैलवेयर के कारण शायद 87.2 लाख व्यक्तिगत रिकॉर्ड लीक हो गए हैं। इसके अलावा न्यूज़पिक्स की संचालक कंपनी यूजा बेस ने भी बताया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शायद लीक हो गई है। कंपनी के अनुसार ऐसा एक मैनेजमेंट टूल में अनधिकृत एक्सेस के कारण हुआ। तीनों कंपनियों के अनुसार अब तक किसी भी अवैध उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है। एनएचके को पता चला है कि जापान का रक्षा मंत्रालय देश की उपग्रह परिवहन क्षमता मजबूत करने के लिए एक सर्वेक्षण और अनुसंधान शुरू करेगा। उपग्रह आधारित सूचना संग्रहण में स्थिरता सुनिश्चित करने में इस पहल से मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का महत्व बढ़ रहा है और अन्य देश अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है जो आपात स्थिति में उपग्रह के ठप हुए कार्यों को वैकल्पिक उपग्रहों का उपयोग कर शीघ्र बहाल करने में सक्षम हो। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए रॉकेट को अल्पावधि में बनाने के तरीकों, रॉकेट प्रक्षेपण विधियों और आवश्यक लागत के संबंध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय फरवरी 2027 तक तय करेगा कि किन कंपनियों के साथ काम करना है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में मतदाता सूची में विवादास्पद संशोधन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में अन्य विपक्षी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल ने कहा, ये सब घबराहट भरी प्रतिक्रिया है, ये सब डर है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, मेरी बात याद रखना। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने पिछले महीने खबर दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की मंजूरी के बिना मतदाता सूची से संभवतः 13 करोड़ नाम हटा दिए थे। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया। जापान सरकार ने नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 1.8 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए एक अहम प्रवेश द्वार है। साथ ही अगस्त के भीषण मृदास्खलन व बाढ़ के बाद विदेशों से राहत सामग्री प्राप्त करने के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। जापान सरकार सुरक्षा सुधार उपायों में सहायता के लिए 2.85 अरब येन यानी लगभग 1.8 करोड़ डॉलर उपलब्ध करा रही है। बृहस्पतिवार को नेपाल में जापान के राजदूत मायदा तोरू ने नेपाली पक्ष के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग हवाई अड्डे के यातायात नियंत्रण टावर के पुनर्निर्माण, हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के विकास और अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस वर्ष नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 वर्ष हो रहे हैं और वो दोनों देशों के बीच मैत्री मजबूत करना चाहता है। टोयोटा मोटर ने चीन की दो बड़ी वाहन कंपनियों के साथ एक नए त्रिपक्षीय रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। टोयोटा दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार में अपनी स्पर्धात्मक बढ़त को गति देना चाहती है। टोयोटा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टोयोटा के इन कार कंपनियों के साथ चीन में दो संयुक्त उद्यम हैं। नए गठजोड़ के तहत टोयोटा और FAW के स्वामित्व वाले कारोबार का 50% हिस्सा ग्वांगजू ऑटोमोबाइल हासिल कर लेगी। इससे दोनों संयुक्त उद्यम ग्वांगजू के अधीन आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि तीनों कंपनियां अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन व बिक्री में सहयोग करेंगी। ऐसा लगता है कि टोयोटा को चीनी कंपनियों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से वाहनों का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण तेज करने की उम्मीद है। चीन में नई कारों के बाजार में ठहराव आ गया है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच जापानी निर्माताओं की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकान वा हिदारी नी अरिमास।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमास्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमास।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इक
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか？ 101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर,
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोट्टे
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
4: नोट्टे कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう言ったらいいですか？あの、すみません。金閣寺までどう言ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेरु, कोनो होटेरु।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी, मिगी, हिदारी, हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुग।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुग, मस्सुग।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुग इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね、かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません、忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました、ありがとうございます。
2: さあ行こう。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिये प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: होक्साई फोसो राजियो निप्पन देस। टोक्यो करा ओकुरी शिमासु।
9: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

0: टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 9 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। रूस के अभियोजकों ने नीदरलैंड्स की सरकार और अन्य से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अधिकारियों को हिरासत में लेकर उन्हें रूस को सौंपने का अनुरोध किया है। मॉस्को में महाअभियोजक कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित आईसीसी के 9 अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। दिसंबर 2025 में एक रूसी अदालत ने इन अधिकारियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने अकाने और अन्य अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में 3.5 साल से 15 साल तक की कारावास की सजा सुनाई थी। अकाने की सजा का ठीक से पता नहीं है। मार्च 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक अन्य अधिकारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद रूस ने इन अधिकारियों को वांछित लोगों की सूची में डाल दिया था। आईसीसी ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को गैर कानूनी रूप से रूस भेजने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी का मुख्यालय द हेग में है। एनएचके ने नीदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की, जिन्होंने बताया कि 2021 से रूस को प्रत्यर्पण करने पर प्रतिबंध लगा है और नीदरलैंड्स आईसीसी के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के काम का दृढ़ता से समर्थन करता है। प्रमुख कन्वीनियंस स्टोर संचालक लॉसन सहित कई जापानी कंपनियों ने अनधिकृत एक्सेस के कारण डेटा चोरी की जानकारी दी है। लॉसन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसके 21.5 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा अवैध रूप से एक्सेस किया गया। ग्राहकों के नाम, ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होने की आशंका है। बिग एको नामक कराओके चेन की संचालक दाइची कोशो कंपनी का कहना है कि एक बिजनेस आउटसोर्सिंग कंपनी में मौजूद मैलवेयर के कारण शायद 87.2 लाख व्यक्तिगत रिकॉर्ड लीक हो गए हैं। इसके अलावा न्यूज़पिक्स की संचालक कंपनी यूजा बेस ने भी बताया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शायद लीक हो गई है। कंपनी के अनुसार ऐसा एक मैनेजमेंट टूल में अनधिकृत एक्सेस के कारण हुआ। तीनों कंपनियों के अनुसार अब तक किसी भी अवैध उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है। एनएचके को पता चला है कि जापान का रक्षा मंत्रालय देश की उपग्रह परिवहन क्षमता मजबूत करने के लिए एक सर्वेक्षण और अनुसंधान शुरू करेगा। उपग्रह आधारित सूचना संग्रहण में स्थिरता सुनिश्चित करने में इस पहल से मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का महत्व बढ़ रहा है और अन्य देश अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है जो आपात स्थिति में उपग्रह के ठप हुए कार्यों को वैकल्पिक उपग्रहों का उपयोग कर शीघ्र बहाल करने में सक्षम हो। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए रॉकेट को अल्पावधि में बनाने के तरीकों, रॉकेट प्रक्षेपण विधियों और आवश्यक लागत के संबंध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय फरवरी 2027 तक तय करेगा कि किन कंपनियों के साथ काम करना है।
1: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में मतदाता सूची में विवादास्पद संशोधन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में अन्य विपक्षी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल ने कहा, ये सब घबराहट भरी प्रतिक्रिया है, ये सब डर है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, मेरी बात याद रखना। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने पिछले महीने खबर दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की मंजूरी के बिना मतदाता सूची से संभवतः 13 करोड़ नाम हटा दिए थे। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता सूची में हेर फेर किया। जापान सरकार ने नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 1.8 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए एक अहम प्रवेश द्वार है। साथ ही अगस्त के भीषण मृदा स्खलन व बाढ़ के बाद विदेशों से राहत सामग्री प्राप्त करने के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। जापान सरकार सुरक्षा सुधार उपायों में सहायता के लिए 2.85 अरब येन यानी लगभग 1.8 करोड़ डॉलर उपलब्ध करा रही है। बृहस्पतिवार को नेपाल में जापान के राजदूत मायदा तोरु ने नेपाली पक्ष के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग हवाई अड्डे के यातायात नियंत्रण टावर के पुनर्निर्माण, हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के विकास और अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस वर्ष नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 वर्ष हो रहे हैं और वो दोनों देशों के बीच मैत्री मजबूत करना चाहता है। टोयोटा मोटर ने चीन की दो बड़ी वाहन कंपनियों के साथ एक नए त्रिपक्षीय रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। टोयोटा दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार में अपनी स्पर्धात्मक बढ़त को गति देना चाहती है। टोयोटा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टोयोटा के इन कार कंपनियों के साथ चीन में दो संयुक्त उद्यम हैं। नए गठजोड़ के तहत टोयोटा और FAW के स्वामित्व वाले कारोबार का 50% हिस्सा ग्वांगजू ऑटोमोबाइल हासिल कर लेगी। इससे दोनों संयुक्त उद्यम ग्वांगजू के अधीन आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि तीनों कंपनियां अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन व बिक्री में सहयोग करेंगी। ऐसा लगता है कि टोयोटा को चीनी कंपनियों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से वाहनों का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण तेज करने की उम्मीद है। चीन में नई कारों के बाजार में ठहराव आ गया है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच जापानी निर्माताओं की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अरो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकबिस्कन मादे दो इत्तरा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबुत्सुकान वा हिदारी नी अरिमासु।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमाश्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोज़ाइमासु।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबुत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तरा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे,
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तरा ई देसु का। इत्तरा
1: है क्रिया
4: इक,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का। निंजा हकुबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का।
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: あの、すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तरा ई देसु का।
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 बान नो बस नी नोत्ते कुदासाई।
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 बान
1: का अर्थ है 101 नंबर,
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: नोत्ते
1: है क्रिया
4: नोरु
1: यानी चढ़ना का ते रूप, इसलिए
4: नोत्ते कुदासाई
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
6: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मास्सुगु।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मास्सुगु मास्सुगु।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक निहाओ ने かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिए प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है, क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
9: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

0: ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। भारत के मरकजी हिजब इख्तलाफ रहनुमा को वोटर फहरिस्तों की एक मुतनाज़ नजरसानी पर एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को बुध के रोज उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो दीगर हिजब इख्तलाफ कानून साजों के हमराह दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक मखसूस एहतजाजी मकाम की तरफ मार्च कर रहे थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी ने कहा, ये सब घबराहट का रद्दे अमल है, ये सब खौफ है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा, मेरे अल्फाज याद रखें। पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं। मकामी जराए अबलाग ने गुज़िश्ता माह खबर दी थी कि हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर कमिश्नरों की मंजूरी के बगैर 13 करोड़ नाम निकालने के बाद वोटर फहरिस्तों की नजरसानी की निगरानी की हो। जापानी हुकूमत ने नेपाल को उसके मरकजी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे की सलामती बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 18 मिलियन डॉलर की इमदाद देने का फैसला किया है। खुश्की से घिरे इस मुल्क के दारुल हुकूमत काठमांडू में त्रिभुवन बैनुल अक्वामी हवाई अड्डा नेपाल में दाखले का एक अहम गेटवे है और अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाबी रेले की तबाहकारियों के बाद से दीगर ममालिक से इमदादी सामान की वसूली के मरकज के तौर पर काम कर रहा है। जापानी हुकूमत हिफाजत को बढ़ाने के इकदाम में मदद के लिए 2.85 बिलियन येन या तकरीबन 18 मिलियन डॉलर फराहम कर रही है। नेपाल में जापान के सफीर मायदा तोरू ने जुमेरात को नेपाली फरीक के साथ याददाश्तों का तबादला किया। जापान की वजारत खारजा का कहना है कि यह रकम हवाई अड्डे के ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तामीर नौ, इसके हवाई ट्रैफिक कंट्रोल निजाम की तैयारी और दीगर इकदाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वजारत ने यह भी बताया कि इस साल नेपाल के साथ सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसने मजीद कहा कि वो दोनों ममालिक की दोस्ती को मजबूत करना चाहती है। टोयोटा मोटर ने दो बड़े चीनी गाड़ी साज इदारों के साथ सैफरी की स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का ऐलान किया है। कंपनी का हदफ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में अपनी मुसाबकती सलाहियत बढ़ाना है। टोयोटा ने जुमेरात को कहा कि इसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांजो ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। टोयोटा इन कंपनियों के साथ चीन में दो मुश्तरका मंसूबे चला चुकी है। नए इत्तेहाद के तहत ग्वांजो ऑटोमोबाइल इस कारोबार का 50% हासिल करेगी जो फिल वक्त टोयोटा और FAW की मिल्कियत में है। इस तरह ये दोनों मुश्तरका मंसूबे ग्वांगजो की छतरी तले आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि कंपनियां तहकीक और तरक्की, पैदावार और फरोख्त में तआवुन करेंगी। बज़ाहिर टोयोटा को उम्मीद है कि चीन की इन बड़ी कंपनियों के साथ तआवुन को मजबूत तर बनाकर गाड़ियों की बिजली पर मुंतकली और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अमल को तेज किया जा सकता है। नई गाड़ियों के लिए चीन की मकामी मंडी बदस्तूर जमूद का शिकार है और मुसाबिकत में शिद्दत के बायस जापानी गाड़ी साजों की फरोख्त में कमी देखी गई है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। 2026 का नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नावी पिले के नाम किया गया है। रूस में इस्तखासा ने हाईलैंड की हुकूमत और दीगर को बैन अक्वामी फौजदारी अदालत के अहदेदारों को हिरासत में लेने और उनके हवाले करने की दरख्वास्त भेजी है और गैर मजाज रसाई की बुनियाद पर डेटा में नकबजनी की रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की अहम खबरें खत्म हुई।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 9 अक्टूबर शुक्रवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वायला कावानो से सुने समाचार। नॉर्वे की नोबेल समिति ने शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानून को बढ़ावा देने के प्रयासों के लिए नवी पिल्लई को 2026 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। वे इस समय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश हैं। रूस के अभियोजकों ने नीदरलैंड्स की सरकार और अन्य से अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय आईसीसी के अधिकारियों को हिरासत में लेकर उन्हें रूस को सौंपने का अनुरोध किया है। मॉस्को में महाअभियोजक कार्यालय ने बृहस्पतिवार को एक बयान जारी कर कहा कि अध्यक्ष अकाने तोमोको सहित आईसीसी के 9 अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। दिसंबर 2025 में एक रूसी अदालत ने इन अधिकारियों को दोषी ठहराया था। अदालत ने अकाने और अन्य अधिकारियों को उनकी अनुपस्थिति में 3.5 साल से 15 साल तक की कारावास की सजा सुनाई थी। अकाने की सजा का ठीक से पता नहीं है। मार्च 2023 में आईसीसी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और एक अन्य अधिकारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए थे, जिसके बाद रूस ने इन अधिकारियों को वांछित लोगों की सूची में डाल दिया था। आईसीसी ने यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों से बच्चों को गैर कानूनी रूप से रूस भेजने का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार है। आईसीसी का मुख्यालय द हेग में है। एनएचके ने नीदरलैंड्स के न्याय मंत्रालय के प्रवक्ता से बात की, जिन्होंने बताया कि 2021 से रूस को प्रत्यर्पण करने पर प्रतिबंध लगा है और नीदरलैंड्स आईसीसी के न्यायाधीशों और कर्मचारियों के काम का दृढ़ता से समर्थन करता है। प्रमुख कन्वीनियंस स्टोर संचालक लॉसन सहित कई जापानी कंपनियों ने अनधिकृत एक्सेस के कारण डेटा चोरी की जानकारी दी है। लॉसन ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसके 21.5 लाख से अधिक ग्राहकों का डेटा अवैध रूप से एक्सेस किया गया। ग्राहकों के नाम, ईमेल एड्रेस और क्रेडिट कार्ड की जानकारी लीक होने की आशंका है। बिग एको नामक कराओके चेन की संचालक दाइची कोशो कंपनी का कहना है कि एक बिजनेस आउटसोर्सिंग कंपनी में मौजूद मैलवेयर के कारण शायद 87.2 लाख व्यक्तिगत रिकॉर्ड लीक हो गए हैं। इसके अलावा न्यूज़पिक्स की संचालक कंपनी यूजा बेस ने भी बताया है कि कुछ उपयोगकर्ताओं की व्यक्तिगत जानकारी शायद लीक हो गई है। कंपनी के अनुसार ऐसा एक मैनेजमेंट टूल में अनधिकृत एक्सेस के कारण हुआ। तीनों कंपनियों के अनुसार अब तक किसी भी अवैध उपयोग की पुष्टि नहीं हुई है। एनएचके को पता चला है कि जापान का रक्षा मंत्रालय देश की उपग्रह परिवहन क्षमता मजबूत करने के लिए एक सर्वेक्षण और अनुसंधान शुरू करेगा। उपग्रह आधारित सूचना संग्रहण में स्थिरता सुनिश्चित करने में इस पहल से मदद मिलेगी। रक्षा मंत्रालय का कहना है कि सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपग्रहों का महत्व बढ़ रहा है और अन्य देश अंतरिक्ष के सैन्य उपयोग को बढ़ावा देने की दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं। मंत्रालय ने ऐसी प्रणाली बनाने की आवश्यकता पर बल दिया है जो आपात स्थिति में उपग्रह के ठप हुए कार्यों को वैकल्पिक उपग्रहों का उपयोग कर शीघ्र बहाल करने में सक्षम हो। मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि वे उपग्रह प्रक्षेपण के लिए रॉकेट को अल्पावधि में बनाने के तरीकों, रॉकेट प्रक्षेपण विधियों और आवश्यक लागत के संबंध में निजी क्षेत्र से प्रस्ताव आमंत्रित करने की योजना बना रहे हैं। मंत्रालय फरवरी 2027 तक तय करेगा कि किन कंपनियों के साथ काम करना है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। भारत में मतदाता सूची में विवादास्पद संशोधन के विरोध में हुए एक प्रदर्शन के दौरान राहुल गांधी को पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बुधवार को राजधानी नई दिल्ली में अन्य विपक्षी सांसदों के साथ विरोध प्रदर्शन स्थल की ओर मार्च करते समय हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। राहुल ने कहा, ये सब घबराहट भरी प्रतिक्रिया है, ये सब डर है, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा, मेरी बात याद रखना। समूचे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। स्थानीय मीडिया ने पिछले महीने खबर दी थी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य आयुक्तों की मंजूरी के बिना मतदाता सूची से संभवतः 13 करोड़ नाम हटा दिए थे। विपक्ष मुख्य निर्वाचन आयुक्त के इस्तीफे की मांग कर रहा है। उसका आरोप है कि आयुक्त ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता सूची में हेरफेर किया। जापान सरकार ने नेपाल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सुरक्षा में सुधार के लिए लगभग 1.8 करोड़ डॉलर की अनुदान सहायता देने का निर्णय लिया है। नेपाल की राजधानी काठमांडू का त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश के अंदरूनी इलाकों में जाने के लिए एक अहम प्रवेश द्वार है। साथ ही अगस्त के भीषण मृदास्खलन व बाढ़ के बाद विदेशों से राहत सामग्री प्राप्त करने के केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। जापान सरकार सुरक्षा सुधार उपायों में सहायता के लिए 2.85 अरब येन यानी लगभग 1.8 करोड़ डॉलर उपलब्ध करा रही है। बृहस्पतिवार को नेपाल में जापान के राजदूत मायदा तोरू ने नेपाली पक्ष के साथ दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार इस धनराशि का उपयोग हवाई अड्डे के यातायात नियंत्रण टावर के पुनर्निर्माण, हवाई यातायात नियंत्रण प्रणाली के विकास और अन्य उपायों के लिए किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस वर्ष नेपाल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना को 70 वर्ष हो रहे हैं और वो दोनों देशों के बीच मैत्री मजबूत करना चाहता है। टोयोटा मोटर ने चीन की दो बड़ी वाहन कंपनियों के साथ एक नए त्रिपक्षीय रणनीतिक गठजोड़ की घोषणा की है। टोयोटा दुनिया के सबसे बड़े वाहन बाजार में अपनी स्पर्धात्मक बढ़त को गति देना चाहती है। टोयोटा ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांगजू ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। टोयोटा के इन कार कंपनियों के साथ चीन में दो संयुक्त उद्यम हैं। नए गठजोड़ के तहत टोयोटा और FAW के स्वामित्व वाले कारोबार का 50% हिस्सा ग्वांगजू ऑटोमोबाइल हासिल कर लेगी। इससे दोनों संयुक्त उद्यम ग्वांगजू के अधीन आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि तीनों कंपनियां अनुसंधान एवं विकास, उत्पादन व बिक्री में सहयोग करेंगी। ऐसा लगता है कि टोयोटा को चीनी कंपनियों के साथ मजबूत सहयोग के माध्यम से वाहनों का विद्युतीकरण और आधुनिकीकरण तेज करने की उम्मीद है। चीन में नई कारों के बाजार में ठहराव आ गया है और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच जापानी निर्माताओं की बिक्री में गिरावट देखी जा रही है। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 32वें पाठ में आप कहीं जाने का तरीका पूछना सीखेंगे।
1: हारुसान हाउस का निवासी काइतो और उसका निंजा प्रेमी अमरीकी दोस्त माइक हाईवे बस लेकर मिए प्रिफेक्चर के उएनोशी स्टेशन पहुंच गए हैं। पास में किराए के कपड़ों की दुकान है जहां से माइक ने निंजा की पोशाक ली है और उसे पहनकर तैयार हो गया है। अब दोनों निंजा संग्रहालय की ओर जा रहे हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 32वें पाठ की बातचीत।
2: マイク似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。あのすみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं। पहले काइतो ने माइक की पोशाक की तारीफ की।
2: माइक नियाओ ने।
0: माइक जच रहे हो।
2: काकोई।
0: रौबदार।
1: माइक ने जवाब दिया।
3: उरेशी ना।
0: दिल खुश हो गया।
1: उसके बाद माइक ने पास से गुजरते एक आदमी से पूछा।
3: अनो सुमिमासेन।
0: माफ कीजिए।
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का।
0: निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं?
1: आदमी ने उत्तर दिया।
2: कोनो मिचे ओ मास्सुगु इत्ते कुदासाई।
0: इस सड़क पर सीधे चले जाइए।
2: हकुबत्सुकान वा हिदारी नी अरिमास।
0: संग्रहालय बाईं तरफ है।
1: फिर माइक ने कहा।
3: वाकरिमास्ता।
0: समझ गए।
3: अरिगातो गोजाइमास।
0: धन्यवाद।
1: इसके बाद काइतो ने माइक से कहा।
2: सा इको।
0: तो चलो।
1: संग्रहालय ज्यादा दूर नहीं है। स्टेशन से पैदल सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है और इस क्षेत्र में निंजा की पोशाक किराए पर लेने की बहुत सारी दुकानें हैं।
0: आज का मुख्य वाक्य है
3: निंजा हकुबत्सुकान मादे दो इत्तारा ई देसु का,
0: यानी निंजा संग्रहालय तक कैसे जा सकते हैं। ये वाक्य याद करके आप कहीं जाने का तरीका पूछ सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: निंजा हकुबत्सुकान
1: का अर्थ है निंजा संग्रहालय।
4: मादे
1: एक कारक है जिसका मतलब है तक, और
4: दो इत्तारा ई देसु
1: का अर्थ है कैसे जा सकते हैं।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं जाने का तरीका पूछने के लिए पहले उस जगह का नाम बोलते हैं, उसके बाद लगाते हैं कारक
4: मादे,
0: और उसके बाद कहते हैं
4: दो इत्तारा ई देसु का। इत्तारा
1: है क्रिया
4: इक,
1: यानी जाना का वो रूप जिससे आप ये बोल सकते हैं कि एक काम के होने पर दूसरा काम होगा। इस वाक्य को पूरा एक साथ याद कर लीजिए।
0: तो अब उच्चारण करने का अभ्यास करते हैं।
4: どう言ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？忍者博物館までどう行ったらいいですか？
1: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें एक पर्यटक क्योतो स्टेशन के सामने बस स्टॉप पर खड़ा है और कहीं जाने का तरीका पूछ रहा है।
5: すみません。 金閣寺までどう行ったらいいですか？ 101番のバスに乗ってください。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले एक आदमी ने पूछा।
5: すみません。
0: माफ कीजिए।
1: शायद आपको याद होगा कि किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस वाक्य का उपयोग कर सकते हैं। आदमी ने आगे कहा।
5: किंकाकुजी मादे दो इत्तारा ई देसु का?
0: किंकाकुजी मंदिर तक कैसे जा सकते हैं?
1: इसमें
4: किंकाकुजी
1: है किंकाकुजी मंदिर, जहां वो जाना चाहता है। इसके बाद दूसरे आदमी ने जवाब दिया,
6: 101 番のバスに乗ってください。
0: बस नंबर 101 ले लीजिए।
1: इसमें
4: 101 番
1: का अर्थ है 101 नंबर।
4: बस
1: का अर्थ है बस और
4: 乗って
1: है क्रिया
4: 乗る
1: यानी चढ़ना का ते रूप। इसलिए
4: 乗ってください
1: का मतलब है चढ़िए।
0: अब वाक्य सुनिए और साथ साथ बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: どう言ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आपको अपने होटल लौटने का रास्ता समझ नहीं आ रहा और आप नक्शा दिखाते हुए रास्ता पूछ रहे हैं। ये होटल के लिए जापानी भाषा में कहेंगे
4: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
1: तो
4: अनो सुमिमासेन
1: से शुरू करके वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
5: すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
0: अब बारी है कुछ संबंधित शब्द सीखने की। आज हम कुछ दिशाओं के जापानी शब्द सीखेंगे। दाएं को कहते हैं
4: मिगी
0: और बाएं को
4: हिदारी।
0: सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: मिगी मिगी हिदारी हिदारी।
1: सीधा का जापानी शब्द है
4: मस्सुग।
1: इसका भी अभ्यास कर लीजिए।
4: मस्सुग मस्सुग।
0: तो सीधे चले जाइए को जापानी में कहेंगे
4: मस्सुग इत्ते कुदासाई।
1: अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
7: माइक 似合うね。かっこいい。
3: 嬉しいな。すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
2: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
3: わかりました。ありがとうございます。
2: さあ、行こう。
4: トラベルガイド。
0: अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ। आज के पाठ में माइक और काइतो हाईवे बस लेकर मिये प्रेफेक्चर गए थे। ये बसें समय जरूर लगाती हैं, लेकिन जेब पर हल्की होती हैं। इसलिए आज हम बता रहे हैं जापान की हाईवे बसों के बारे में।
1: हाईवे बसों से आप सीधे कई जगह जा सकते हैं। रात्रि बस लेने से समय भी बचता है क्योंकि आप सोते सोते पहुंच जाते हैं।
0: टोक्यो से हाईवे बस में नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे मुख्य शहरों के अलावा फुजी पर्वत, हाकोने और कोसात्सु ओनसेन जाना भी लोकप्रिय है।
1: बस की बुकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं और कई सेवाओं में तो सीट भी चुन सकते हैं। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में काइतो निंजा के शुरिकेन हथियार से निशाना लगाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए
1: सायोनारा।
8: जापान टोक्यो।

0: ये एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाअत फरमाइए। भारत के मरकजी हिजबे इख्तलाफ रहनुमा को वोटर फहरिस्तों की एक मुतनाज़ नजरसानी पर एहतजाज के दौरान पुलिस की जानिब से मुख्तसर वक्त के लिए हिरासत में लिया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी को बुध के रोज उस वक्त हिरासत में लिया गया जब वो दीगर हिजब इख्तलाफ कानून साजों के हमरा दारुल हुकूमत नई दिल्ली में एक मखसूस एहतजाजी मकाम की तरफ मार्च कर रहे थे। बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया। गांधी ने कहा, ये सब घबराहट का रद्द अमल है, ये सब खौफ है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मेरे अल्फाज याद रखें। पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं। मकामी जराए अबलाग ने गुज़िश्ता माह खबर दी थी कि हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दीगर कमिश्नरों की मंजूरी के बगैर 13 करोड़ नाम निकालने के बाद वोटर फहरिस्तों की नजरसानी की निगरानी की हो। जापानी हुकूमत ने नेपाल को उसके मरकजी बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे की सलामती बेहतर बनाने के लिए तकरीबन 18 मिलियन डॉलर की इमदाद देने का फैसला किया है। खुश्की से घिरे इस मुल्क के दारुल हुकूमत काठमांडू में त्रिभुवन बैनुल अक्वामी हवाई अड्डा नेपाल में दाखले का एक अहम गेटवे है और अगस्त में बड़े पैमाने पर मिट्टी के तोदे गिरने और सैलाबी रेले की तबाहकारियों के बाद से दीगर ममालिक से इमदादी सामान की वसूली के मरकज के तौर पर काम कर रहा है। जापानी हुकूमत हिफाजत को बढ़ाने के इकदाम में मदद के लिए 2.85 बिलियन येन या तकरीबन 18 मिलियन डॉलर फराहम कर रही है। नेपाल में जापान के सफीर मायदा तोरू ने जुमेरात को नेपाली फरीक के साथ याददाश्तों का तबादला किया। जापान की वजारत खारजा का कहना है कि यह रकम हवाई अड्डे के ट्रैफिक कंट्रोल टावर की तामीर नौ, इसके हवाई ट्रैफिक कंट्रोल निजाम की तैयारी और दीगर इकदाम के लिए इस्तेमाल की जाएगी। वजारत ने यह भी बताया कि इस साल नेपाल के साथ सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो रहे हैं। इसने मजीद कहा कि वो दोनों ममालिक की दोस्ती को मजबूत करना चाहती है। टोयोटा मोटर ने दो बड़े चीनी गाड़ी साज इदारों के साथ सैफरी की स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद का ऐलान किया है। कंपनी का हदफ दुनिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट में अपनी मुसाबकती सलाहियत बढ़ाना है। टोयोटा ने जुमेरात को कहा कि इसने चाइना FAW कॉरपोरेशन और ग्वांजो ऑटोमोबाइल ग्रुप के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। टोयोटा इन कंपनियों के साथ चीन में दो मुश्तरका मंसूबे चला चुकी है। नए इत्तेहाद के तहत ग्वांजो ऑटोमोबाइल इस कारोबार का 50% हासिल करेगी जो फिल वक्त टोयोटा और FAW की मिल्कियत में है। इस तरह ये दोनों मुश्तरका मंसूबे ग्वांगजो की छतरी तले आ जाएंगे। टोयोटा का कहना है कि कंपनियां तहकीक और तरक्की, पैदावार और फरोख्त में तआवुन करेंगी। बज़ाहिर टोयोटा को उम्मीद है कि चीन की इन बड़ी कंपनियों के साथ तआवुन को मजबूत तर बनाकर गाड़ियों की बिजली पर मुंतकली और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के अमल को तेज किया जा सकता है। नई गाड़ियों के लिए चीन की मकामी मंडी बदस्तूर जमूद का शिकार है और मुसाबिकत में शिद्दत के बायस जापानी गाड़ी साजों की फरोख्त में कमी देखी गई है।
1: आखिर में खास खबरों का खुलासा। 2026 का नोबेल अमन इनाम देने का फैसला नावी पिले के नाम किया गया है। रूस में इस्तखाज़ा ने हाईलैंड की हकूमत और दीगर को बैन अक्वामी फौजदारी अदालत के अहदेदारों को हिरासत में लेने और उनके हवाले करने की दरख्वास्त भेजी है और गैर मजाज रसाई की बुनियाद पर डेटा में नकबजनी की रिपोर्ट करने वाली जापानी कंपनियों की तादाद में इजाफा हुआ है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से आज की अहम खबरें ख़त्म हुई।

0: 101 वन यानी 101 नंबर, बस बस का जापानी तलफ़ुज़ है, और नोत्ते फेल नोरू यानी सवार होना की ते शक्ल है, नोत्ते कुदासाई कि मैं नहीं हुए सवार हूँ।
1: तो सामीन अब सुनिए और दोहराइए। どう
2: いったらいいですか？金閣寺までどう行ったらいいですか？あのすみません。金閣寺までどう行ったらいいですか？
0: अब कुछ दूसरे मकामात के नामों के साथ मशक करें। फर्ज करें आप जिस होटल में ठहरे हुए हैं उसका रास्ता भूल गए। आप किसी को नक्शे में अपने होटल के मकाम पर उंगली रखकर दिखाते हुए पूछना चाहते हैं कि इस होटल तक कैसे जाएंगे। इस होटल की जापानी है
2: कोनो होटेल, कोनो होटेल।
0: बात का आगाज आनो सुमिमासेन से करें।
3: आनो सुमिमासेन, कोनो होटेल मादे दो इत्तरा ई देस का? あのすみません。このホテルまでどう行ったらいいですか？
0: अब फर्ज करें आप क्योटो स्टेशन पर हैं और शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हैं। शिंकानसेन बुलेट ट्रेन के प्लेटफॉर्म को कहते हैं
2: शिंकानसेन नो होम, शिंकानसेन नो होम।
0: तो सामीन कोशिश करें।
4: あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？あのすみません。新幹線のホームまでどう行ったらいいですか？
1: उम्मीद है आपने दुरुस्त जुमला बना लिया होगा।
0: अब वक्त हुआ है इस्तेमाल की मशक का। आज हम आपको दाएं बाएं वगैरह के बारे में बता रहे हैं। दाएं को कहते हैं मिगी और बाएं को हिदारी।
1: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
2: मिगी, हिदारी।
0: सीधा जाने को कहते हैं मस्सुगु। इसे भी दोहराकर मश्क करें।
2: मस्सुगु।
0: अगर किसी से कहना हो कि सीधा जाएं तो कहेंगे मस्सुगु इत्ते कुदासाई, और अगर दाएं मोड़ने का कहना हो तो फेल मगारू यानी मोड़ना इस्तेमाल करते हुए यूं कहेंगे मिगी नी मगाते कुदासाई।
1: और अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं। उस हिस्से पर खास ध्यान दें जिसमें माइक रास्ता पूछता है।
5: माइक नियाउ ने, काक्कोई।
6: उरेशी ना। अनो सुमिमासेन, निंजा हकबुत्सुकान मादे दो इत्तरा ई देसु का?
5: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
6: わかりました。ありがとうございます。
5: さあ、行こう。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
1: अब मिया का सफरी हिदायतनामा। कालतो और माइक ने मिया प्रीफेक्चर जाने के लिए हाईवे बस इस्तेमाल की थी। बस के जरिए सफर में कुछ वक्त लगता है, लेकिन ये सफर का सस्ता जरिया है। तो आज का मौजू है जापान की हाईवे बसें।
0: हाईवे बसों के जरिए कई मकबूल मकामात तक बराह रास्त जाया जा सकता है। अगर रात की बस से सफर किया जाए तो सोते हुए सफर करने के बायस वक्त बचाया जा सकता है।
1: ये बसें ज्यादातर किन मकामात के लिए दस्तयाब हैं?
0: हाईवे बसों के कई रूट हैं। टोक्यो से नागोया, ओसाका और क्योटो जैसे बड़े शहरों के रूट मकबूल हैं। इसके अलावा कोहे फूजी, हाकोने और कुसात्सु ओनसेन गर्म चश्मा जाने वाले रूट भी हैं।
1: इनकी सीट की बुकिंग किस तरह होती है?
0: इंटरनेट वगैरह के जरिए टिकट आसानी से खरीदा जा सकता है। बाज बसों में सीट नंबर तक भी तय किया जा सकता है। लग्जरी बसें कुछ महंगी होती हैं, लेकिन उनमें पांव फैलाने की जगह या अलग कमरे जैसी नशिस्तें दस्तियाब होने के बायस सफर ज्यादा आरामदेह हो जाता है।
1: यानी जापान में मुख्तलिफ इलाकों के सफर के लिए बस एक इंतखाब हो सकता है। सबक में कायतो शुरी के निंजा स्टार फेंकने की कोशिश करता है।